0: Hot Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस
2: कौन बोल रहा है
3: ये और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
2: क्या मजाक चल रही है
3: क्या मजाक चल रहा है सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
4: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर

back to Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi. Oh, Yontika, baby. No, no, not just baby. Let's say, hey, baby. कल क्या होगा वो मंडे सोचेंगे, आज से वाइब चेक होगा. और गाने का नाम है मस्त कलंदर. Let's go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट गाना।

वीकेंड पे आंखें खुली हो या बंद, सपने सब डांस फ्लोर वाले ही आते हैं। क्लब मिर्ची में डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, वेलकम बैक पीपल। चलो फिर से करें मोहब्बतें।

क्लब मिर्ची जा रही है विद जीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। पार्टी का ग्राफ अब सीधा ऊपर जा रहा है और नेबर्स का बीपी भी। तो हमारे ताल से ताल मिलाइए और नाचना शुरू कीजिए।

करेगा वीकेंड पे सबके अंदर का हिडन परफॉर्मर, उसको बाहर लाएंगे और गाने पे नाचेंगे, क्योंकि अरे दीवानो सभी को बनना है डॉन। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, दिस इज टू इनफिनिटी डांसिंग, लेट्स गो।

0: असली कार्डियो जिम नहीं है बॉस, तीन गाने बैक टू बैक पे डांस करना, जब गाना बजेगा लेजी लम्हे, लेजीनेस का तो जगह ही नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओंतिका, राइट नाउ जॉइन अस ऑन द डांस फ्लोर।
1: डामी उंगर
2: उनके
1: उंगर
2: उनके
1: डामी उन
2: ओके।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

0: वीकेंड ऑफिशियली एंट्री मार चुका है। जो लोग बोलते थे इस बार घर पे चिल करेंगे, वो भी आप डांस फ्लोर के जीपीएस पे ही मिलेंगे। लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, ब्लू आईज ऑन योर रेडियो सेट्स राइट नाउ।
1: प्रिंसिपल बिग बिबी शो शो की फैन है।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Bana. Murga, murga. Nafis bala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hi. Ye call. बैंक से है, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ।
3: एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
7: ये बेल जा रही है।
5: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये आपके
5: पास
3: है?
5: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
3: किससे पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
3: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: सिर्फ मुझे बताना है, ये सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह
5: नहीं तो
3: थोड़ी ना।
5: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विके, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया, उन्होंने कहा था।
3: अरे मैं खुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

होनी चाहिए जहाँ दो चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाए, एक बीट, दूसरी एक्साइटमेंट. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका. वेलकम बैक. कयामत करेंगे फ्रॉम हाउसफुल 5. लेट्स गो.

श्रेया घोषाल विद थोड़ी सी दारू, ठीक है, पर नॉट ड्राइविंग वाइल थोड़ी सी दारू इज इनसाइड ऑफ यू. ओके, हैव फन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज तुम हो तो लव मिर्ची पे मस्ती है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

और इसी फिल्मी हंगामा के साथ डीजे रिचर्ड और मिर्ची ओयोंतिका बोल रहे हैं वीकेंड को ओवर एक्ट करो क्योंकि मंडे वैसे भी विलन बन के ही आएगा. बट बिफोर वी साइन ऑफ, हियर्स अ किलर ट्रैक, दे कॉल इट मर्डर, मर्डर बाय माफी, रिक्रिएटेड फ्रॉम अ 90s रेगे ट्रैक बाय इना कमोजी. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका ऑफिशियली गेट्स ओवर फॉर द डे. टाटा.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन.

0: वीकेंड आ गया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफिशियली सीन पे चली गई। वेलकम टू क्लब मिर्ची पीपल, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योनतिका बैक अगेन विद दिस वीकेंड पार्टी डेस्टिनेशन। हे पार्टी स्क्वाड, वॉल्यूम को फुल करो, डीजे रिचर्ड के साथ मूड उठने वाला है सीधे 100 आसमां के ऊपर। लाइट्स ऑन, ड्रामा ऑन एंड वीकेंड का सीन शुरू करे, लेट्स गो।
1: When I met you in the summer,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस
2: कौन बोल रहा है
3: यार ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
2: क्या मजाक चल रही है
3: क्या मजाक चल रहा है सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
4: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: दूसरा गाना सुपर हिट
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट
3: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर 1 रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

वीकेंड का हार्ट ब्रेक भी ग्लैमरस लगता है क्योंकि बैकग्राउंड में बीट बज रहा है, राइट? क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, तो चलो दिल पर एक साथ डांस फ्लोर पे आ जाए।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ आपसे, रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: Ladies and gentlemen, we are gonna go!

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

हमारे सबका एक दोस्त है जो खुद को इंटरनेशनल परफॉर्मर समझता है। इन बिटवीन ब्रेक्स आवन और जावन के बीच में एक इंटरनेशनल ट्रैक आपके लिए, गाने का नाम है ज़ेरुसलेमा।

0: डांस फ्लोर का बादशाह कौन है? वही तो है असली बात, डीजे रिचर्ड है म्यूजिक का बादशाह। मुन्नी का नाम है मिर्ची ओयोंते का, क्लब मिर्ची जारी है दोस्तों।
1: ओ मुन्नी रे, तेरा गली गली में।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन.

स्क्वाड में एक दोस्त जरूर होता है जो हर गाने पे बोलता है, अरे ये तो मेरा सॉन्ग है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो दिका। लेट्स गो सैयारा।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना,
4: हाँ,
5: धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो
2: ना? भाई तो एक बात सुन, ये आपके हो
4: पास
2: गया है।
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किस चीज से पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह
4: नहीं तो
2: थोड़ी ना।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते हैं।
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi. Oi, Ontika, baby. No, not just baby. Let's say hey, baby. कल क्या होगा वो मंडे सोचेंगे, आज से वाइब चेक होगा. और गाने का नाम है मस्त कलंदर. Let's go.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

सेकंड में आंखें खुली हो या बंद, सपने सब डांस फ्लोर वाले ही आते हैं। क्लब मिर्ची में टीचर रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, वेलकम बैक पीपल। चलो फिर से करें मोहब्बतें।

10 क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो। देखा पार्टी का ग्राफ अब सीधा ऊपर जा रहा है और नेबर्स का बीपी भी, तो हमारे ताल से ताल मिलाइए और नाचना शुरू कीजिए।

नहीं करेगा, वीकेंड पे सबके अंदर का हिडन परफॉर्मर उसको बाहर लाएंगे और गाने पे नाचेंगे, क्योंकि अरे दीवानो सभी को बनना है डॉन। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, दिस इज टू इनफिनिटी डांसिंग, लेट्स गो।

0: असली कार्डियो जिम नहीं है बॉस, तीन गाने बैक टू बैक पे डांस करना, जब गाना बजेगा लेजी लम है, लेजीनेस का तो जगह ही नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची एंड मिर्ची ऑन योर टिका राइट नाउ, जॉइन अस ऑन द डांस फ्लोर।
1: Dame un grr,
2: un qué?
1: Un grr,
2: un qué?
1: Dame un tic tac tac tic tac.
2: Okay.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

0: वीकेंड ऑफिशियली एंट्री मार चुका है। जो लोग बोलते थे इस बार घर पे चिल करेंगे, वो भी आप डांस फ्लोर के जीपीएस पे ही मिलेंगे। लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, ब्लू आईज ऑन योर रेडियो सेट्स राइट नाउ।
1: प्रिंसिपल भी शो शो के फैन है।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा है?
3: रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा हूँ। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
12: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
11: on a ride.
0: Club Mirchi.

गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जहाँ दो चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाए, एक बीट, दूसरी एक्साइटमेंट। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, वेलकम बैक। कयामत करेंगे फ्रॉम हाउसफुल 5। लेट्स गो।

ढिल्लों एंड श्रेया घोषाल विद थोड़ी सी दारू. हाँ ठीक है, पर नॉट ड्राइविंग वाइल थोड़ी सी दारू इज इनसाइड ऑफ यू. ओके, हैव फन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज तुम हो तो लव मिर्ची पे मस्ती है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

मिर्ची एवरी वीकेंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल का आपके साथ, जहां आपको इस सोनी दे नखरे सोने लगते है कि नहीं।

किसी फिल्मी हंगामा के साथ डीजे रिचर्ड और मिर्ची ओयोंदिका बोल रहे हैं वीकेंड को ओवर एक्ट करो क्योंकि मंडे वैसे भी विलन बन के ही आएगा. बट बिफोर वी साइन ऑफ हियर्स अ किलर ट्रैक, दे कॉल इट मर्डर, मर्डर बाय मॉफी, रिक्रिएटेड फ्रॉम अ 90s रेगे ट्रैक बाय इना कमूजी. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंदिका ऑफिशियली गेट्स ओवर फॉर द डे. टाटा.

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: ¡Cabana!
0: ¡Burga, burga! ¡La fiesta la burga!
1: ¡Mirchi, burga!
2: ¿Hola?
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज़ दिस
2: कौन बोल रहा है
3: ये और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
2: क्या मजाक चल रही है
3: क्या मजाक चल रहा है सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
4: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: इट्स हॉट

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virpa, la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, तो हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
3: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
3: कोई बोल रहा
4: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला

mucho enajo paega. Cómola, cómola.

तुझे ना हो पाएगा। कौन बोला

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: का समय।
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
2: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

शंसौ यौ मध्य उत्सहिति भोग्यतयाप्युपातौ भूयस्तथेति तव पाणितल प्रदिष्टौ श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ।

0: और सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
4: हाँ जी.
2: हाँ बोलिए.
4: 33501.
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला.
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
5: हाय.
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना,
4: हाँ?
5: धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए.
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है. एक सेकंड.
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
6: ये बेल जा रही है.
4: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ. आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तू एक बात सुन, ये आपके हो
4: पास
2: क्या है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा? 33501. हाँ सर, 33501.
2: हेलो.
4: हाँ जी सर. सर यही पासवर्ड है.
2: मेरी
4: बात सुनिए ना.
2: किस से पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपको.
2: भाई ये क्या कंफर्म? भाई मेरा एटीएम कार्ड है.
4: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना आता है.
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है. कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी. टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते.
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है. 33501.
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था.
2: अरे मैं कुकड़ू को.
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए
3: सर, हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस
4: सर, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ सर, मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी
3: सर। ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ आपसे, रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vjet bala burka.
1: Mirchi, burka.
2: Hello?
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: द शो स्टार्ट्स इन
2: एंटरटेनमेंट बहुत हो रहा है आजकल, कंटेंट भी, रील्स भी, सॉन्ग्स भी, शोज भी, हर फ्राइडे कुछ ना कुछ आ ही रहा है। लेकिन ऑनेस्टली याद रहने वाली चीजें बहुत कम बन रही हैं, और शायद इसलिए इस वक्त बॉलीवुड का मूड इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्म है जिसके गाने सिर्फ चल नहीं रहे, कल्चर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ 90s और 2000s की मेमोरीज फिर से कमबैक कर रही हैं। पुराने साउंड सडनली कूल लगने लगे हैं, नए आर्टिस्ट ओवरनाइट स्टार्स बन गए हैं, एंड ऑडियंस सिर्फ नॉइज नहीं, फीलिंग ढूंढ रही है, कनेक्शन ढूंढ रही है, बिकॉज इवेंचुअली एल्गोरिथम सिर्फ अटेंशन खरीद सकते हैं, इमोशन नहीं। और इसी इमोशन के साथ मुंबई से लेकर दुबई तक, कानपुर से दिल्ली तक, दिस इज द मिर्ची टॉक 20 एंड मैं हूं इस शो का होस्ट सुरेन सुंदरम। लेट्स बिगिन। फर्स्ट अप गाना नंबर 20। देखो शुरुआत में कहा था ना मैंने, एंटरटेनमेंट वैसे बहुत हो रहा है लेकिन याद रखने वाली चीजें कम है। This is Dil Wale Chor by Aditya Rikhari and Shreya Ghoshal that features in Pati, Patni aur Wo Do. Sun lo bhai, yaad reh gaya to achhi baat hai.
3: Number 20.

एतबार कुछ गाने अजीब होते हैं, खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका मूड थोड़ी देर और साथ चलता है। इट्स मी सुरेन, एंड शायद इसलिए इस हफ्ते जब मैं एक ओथ सेरेमनी देख रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार एक फिल्म चल रही थी, नायक अनिल कपूर एक दिन के चीफ मिनिस्टर। और जब हमने वो फिल्म देखी थी, इट फेल्ट वाइल्ड, इट फेल्ट एक्साइटिंग, इट फेल्ट इमोशनल, लेकिन एक चीज क्लियर थी यार, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। बिकॉज लेट्स गेट रियल, कौन सा सुपरस्टार अपनी पीक पे पॉलिटिक्स में जंप करता है? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया था, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, लेकिन इस बार फीलिंग थोड़ी अलग थी। शायद इसलिए क्योंकि विजय अभी भी फुल सुपरस्टार मोड में है। He's got young energy, massive fan following, और लोगों के साथ वो इमोशनल कनेक्शन जो सिर्फ स्टार्स के पास होता है। और ओथ सेरेमनी देखते वक्त एक सेकंड के लिए जेन्युइनली लगा, कभी कभी सिनेमा सिर्फ एस्केपिज्म नहीं होता, कभी कभी वो रियलिटी के बहुत नजदीक आ जाता है। और उस मोमेंट में नायक थोड़ी कम फिक्शनल लगी। लुक, आई डोंट नो इफ विजय'स रियल लाइफ रोल

Mrs. Mascara, sung by Nilanjana Ghosh Tastidar, जो दुनिया भर में एआर रहमान के साथ बेस गिटार प्ले कर चुकी हैं, एंड सच कहूं तो सिर्फ रहमान साहब ही हैं जो किसी म्यूजिशियन में से एक ऐसी हॉन्टिंग आवाज डिस्कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा कतिया करूं वाला मूड है, थोड़ा सा मिस्ट्री है। दिस इज मस्कारा, डेब्यूइंग दिस वीक एट नंबर 18 फ्रॉम मैं वापस आऊंगा नंबर

0: ब्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हाय ये कॉल बैंक से है आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं
3: देखिए जी आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर ये पासवर्ड लिख लीजिए मैं आपको बता देता
1: हूँ एक मिनट मैं लिख लेता हूँ
3: हाँ जी
1: हाँ बोलिए
3: 33501
1: अच्छा
3: सर एक सेकंड रुकिए मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ शैलेंद्र जी जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला
1: हेलो
3: मेरी वाइफ के पास भी है एक सेकंड होल्ड करिएगा मैं फोन मिलाता हूँ हेलो डार्लिंग हाय
4: हाय
3: अच्छा ये बताओ ये विक्की का पासवर्ड क्या है
4: विक्की का पासवर्ड 33501 एक काम करिए ना धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है एक सेकंड
1: हेलो
3: सर एक सेकंड होल्ड करना वो धोबी से भी कंफर्म कर ये बेल जा रही है हेलो भैया हेलो भैया मैं बैंक से बोल रहा हूँ आप हमारे कपड़े धोते हो
1: ना? भाई तो एक बात सुन ये आपके हो
3: पास
1: गया है।
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501 हाँ सर 33501
1: हेलो
3: हाँ जी सर सर यही पासवर्ड है मेरी बात सुनिए ना
1: किस से पूछे जा रहे
3: हैं किससे मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपके पास
1: भाई ये क्या कंफर्म भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा पैसे कैसे निकलेंगे यार
1: सिर्फ मुझे बताना है सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह
3: नहीं तो आपको तो जल्दी इतनी मच रही है आपको जल्दी इतनी मच रही है कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते उसमें भी आ रहा था बेकार में एप्लीकेशन डाल दी टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
5: विकी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है 33501
1: किसने दिया मेरा नंबर
5: आपका नंबर आशा ने दिया है उन्होंने कहा था
1: अरे मैं कुकड़ू को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Surin Kesa, only on Mirchi. It's hot.
1: Number 14.
2: Bro,

0: Tera Ho Jaun, a typically Sachin Jigar song with Junita Gandhi and Stebin Ben. And Arijit ke retirement ke baad, thank God, new voices are emerging. Varna har hero ki ek hi awaaz hua karti thi. वैसे भी बॉलीवुड में हीरो बनना शायद इजी है, लेकिन हीरो बने रहना, ना दैट इज द रियल गेम. स्पेशली आज के वक्त में जहां फ्राइडे मॉर्निंग से ज्यादा ब्रूटल फ्राइडे इवनिंग का सोशल मीडिया होता है. और हाल ही में वरुण धवन की एक बात मुझे याद आ गई, उस बात में एक सरप्राइजिंग सच्चाई थी, क्योंकि फॉर अ फ्यू सेकेंड्स वरुण के अंदर का एक्टर नहीं, वरुण की इनसिक्योरिटी बोल रही थी.
1: मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में. द मोस्ट स्ट्रेस आई फेल्ट वाज व्हेन मैं तेरा हीरो वाज रिलीज. मैं तेरा हीरो बिकॉज आई फेल्ट कि दिस वाज अ फिल्म, स्टूडेंट वाज अ फिल्म विद थ्री एक्टर्स. चलो यू नो ऑल द अदर एक्टर्स हैव गॉट वर्क आफ्टर दैट एज वेल, आई हैव नॉट. नाउ आई एम डूइंग दिस फिल्म विच इज अ कम्प्लीट कॉमेडी फिल्म. न्यू एक्टर्स ये जोन या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में. अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलूं कि यार मैं सच्ची में हीरो हूं, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूं, एक्शन करना चाहता हूं, रोमांस करना चाहता हूं, मैं सब कुछ करूंगा ऑडियंस के लिए, जस्ट गिव मी अ चांस. एंड लिटरली आई क्लॉड एंड फॉट एंड क्राइड एंड डन एवरीथिंग पॉसिबल इन दैट फिल्म. मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया. लिटरली मेरा करियर वाज ऑन. इफ मैं तेरा हीरो डिडंट वर्क एज अ सोलो हीरो फिल्म फॉर मी, आई वुड नॉट Be sitting here today.
0: और ये अमेजिंग है क्योंकि बाहर से स्टारडम बहुत ग्लॉसी दिखती है, लॉन्चेस, हिट्स, फेम, फैन फॉलोइंग, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर सबको होता है. What if the audience stops choosing me? What if they stop loving me? शायद इसलिए वरुण की बोली ये बात कनेक्ट करती है, because for one moment वरुण धवन स्टार नहीं लगे, बस एक एक्टर लगे जो सरवाइव करना चाहते हैं. और अब एक गाना जो ऑफिशियली सैयारा गैंग का हिस्सा बन गया है, वही लॉन्गिंग, वही सॉफ्ट हार्ट ब्रेक, वही लेट नाइट फीलिंग. फ्रॉम चांद मेरा दिल, दिस इज द टाइटल ट्रैक, चांद मेरा दिल, बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 13.

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

वही दिल लगाया। और कभी कभी ना एक गाना हिट होने से पहले ही लोगों का बन चुका होता है, इंटरनेट पे, रील्स में, रैंडम लेट नाइट स्क्रोल्स में। और कुछ महीने पहले ऐसी ही दो आवाजें अचानक हर जगह सुनाई देने लगी थी, कृष मंडल एंड किशोर मंडल, दो भाई, नो बिग सेटअप, नो इंडस्ट्री लॉन्च, बस टैलेंट और एक अजीब सी ऑनेस्टी। और मैं खुद इन दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, एंड इनका एक कवर तो अलग ही लेवल पे चला गया था।

See, that's the thing. Perfect नहीं है, polished भी नहीं है, लेकिन इस गाने में वो feel है, और शायद इसलिए लोग इनसे connect कर गए. And फिर Bollywood enter हुआ. Song को scale मिल गया, stars आ गए, gloss आ गया, बादशाह आ गए. And suddenly जिन दो लड़कों की वजह से ये गाना चला, वो अपने ही गाने में background में खड़े नजर आए, like extras. And that felt strange. और थोड़ा सा दुख भी हुआ. नॉट बिकॉज सक्सेस गलत है, ऑफ कोर्स नहीं है यार, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री टैलेंट को एलिवेट करती है और कभी कभी उसे डेकोरेट कर देती है. इंटरनेट ने उन्हें स्टार्स बनाया था, बॉलीवुड ने उन्हें एस्थेटिक बना दिया है. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज रियल कनेक्शन इवेंचुअली अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. और अब एक और शादी के बाद के चक्करों वाला गाना, नंबर 9 पे, फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. दिस इज व्याह करवा दो जी, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नंबर 3।

Who is this, da? Has climbed to number two, and now suddenly the conversation gets much, much bigger. It's me, Suren, and today I want to tell you something about a book. It's about 2010. बात है 2010 की अमीश त्रिपाठी और उनकी लिखी हुई किताब द इमॉर्टल्स ऑफ मेलहुआ शिवा ट्रिलॉजी उसका पहला हिस्सा। और जब मैंने ये किताब पहली बार उठाई तो मैं बहुत बहुत अंदर चला गया और सच कह रहा हूं बाहर ही नहीं निकल पाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया थी, एक सिविलाइजेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इंसान जो भगवान बन जाता है। और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं। और फिर करण जौहर ने इस किताब के राइट्स खरीद लिए। सालों तक कुछ नहीं हुआ, नो फिल्म, नो अपडेट, नो नथिंग। और फिर 2024 में अमीश त्रिपाठी ने कंफर्म किया राइट्स वापस आ गए हैं। मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी रिलीजियस सेंसिटिविटी थी कि अगर आपकी विजन और आपकी एग्जीक्यूशन में एक भी चूक होती ना तो दुनिया आपको माफ नहीं करती। एंड अब खबर है एंड इट्स नॉट कंफर्म येट कि रणवीर सिंह धुरंधर की कामयाबी के बाद इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं। और मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या रणवीर सिंह ये रोल कर सकते हैं, क्या बॉलीवुड इस फिल्म को जस्टिस दे सकता है। लेकिन ये सवाल ही गलत है यार। असली सवाल ये है कि क्या कोई भी फिल्म, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी बजट कभी वो दुनिया बना सकता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी थी। शिवा ट्रिलॉजी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलहुआ डिजर्व टू बी मेड, लेकिन सिर्फ तब जब कोई फिल्म मेकर इतना ब्रेव हो कि वो अपनी विजन को हजारों लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर रख सके। अभी तक वो बंदा आया नहीं था लेकिन शायद अब आ चुका है। इस हफ्ते नंबर वन पे वो गाना है, वो फिल्म है जिसके बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था, यार धुरंधर इतनी बड़ी हो जाएगी 13 हफ्तों के बाद। वो लोग कहाँ हैं, धुरंधर कहाँ हैं और शरारत कहाँ है, आप वो खुद देख लो। नंबर वन आदित्य धर, धुरंधर, शरारत, 13वां हफ्ता। नंबर वन।

0: शरारत 13 हफ्ते और नंबर 1। एंड सच ये है कि इस गाने की जर्नी देखकर एक बात समझ आ जाती है कि हिट्स आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी एक गाना सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं बनता, वो पूरे वक्त का साउंड ट्रैक बन जाता है, और शायद शरारत वही गाना है। किसी के साथ ये था इस बार का मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

माइंडेड। अरे मेरी जैसे डांस किसको आते, कोई योग राज को मैं ही सिखा दे, वो घर पे आते।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर

मैं और तू नंबर 8 और इस हफ्ते मैं सुरेंद्र सुंदरम और तुम और पूरा इंटरनेट रेड कार्पेट्स पे था। पहले द मेट गाला और अब द कैन फिल्म फेस्टिवल। ऐश्वर्या राय बच्चन स्टेयरकेस की मालकिन जैसे हमेशा से रही हैं। There's Alia Bhatt, Aditi Rao Haidri, Jacqueline Fernandez, and of course influencers, जो full attendance में होंगे, no absentees. Cannes, जो कभी world cinema का सबसे बड़ा stage हुआ करता था, अब visibility का Olympics बन गया है. कौन trend हुआ, कौन meme बना, कौन reels पे छा गया, और ये भी सच है, कई लोग वहाँ film promote करने नहीं जाते, खुद को promote करने जाते हैं. देखो मैं judge नहीं कर रहा. 2026 में अटेंशन भी एक करेंसी है और जिस दुनिया में 15 सेकंड की रील किसी को ओवरनाइट सेंसेशन बना सकती है

वहां रेड कार्पेट भी कंटेंट बन जाता है। बस इतना कहना था, स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के बाद सर्टिफिकेट मिलता था, यहाँ ब्रांड डील्स मिलते हैं। वो बीच में जो आपने सैयारा सुना, जस्ट टू रिमाइंड यू, दैट वाज गाना नंबर 7। एंड जो लोग एक्चुअली कुछ फील करते हैं, एक्चुअली कुछ क्रिएट करते हैं, वो यहाँ है इस काउंटडाउन पे हर हफ्ते। नंबर 6 पर है विशाल मिश्रा एंड उनकी दीवानियत। नंबर 6।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा Mirchi मुर्गा.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग. मैं बैंक से बोल रहा हूँ. मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा. क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए.
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर. हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर. जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे.
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ. हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है. अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती.
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ. सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको. अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती.
2: मुझे क्यों मिल रही है? मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं.
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ. मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है. आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो.
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल.
2: हेलो मैडम.
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ. हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ.
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर. से
2: अभी कोई और बोल रही थी.
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए.
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है? इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी.
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर. इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना
7: सर. 15 तारीख जो है वो लास्ट

0: रेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: हाँ? कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
1: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
3: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आप सर रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, आप सर फोन मत काटिएगा।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं। अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
5: थैंक यू
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 5.

और ऑनेस्टली डेविड धवन का नाम आते ही एक पूरा 90s यूनिवर्स एक्टिवेट हो जाता है। आई एम सरेन एंड 90s की बात हो रही है तो उसी दौर में एक कंपोजर थे जो बॉलीवुड के रूल बुक पे चल ही नहीं रहे थे, बेजू शाह। एंड यू नो व्हाट, 90s का बॉलीवुड मेलोडी पे चल रहा था। मेरे

विजू शाह आ गए। सडनली म्यूजिक से रोमांटिक नहीं रहा, स्टाइलाइज्ड हो गया, ड्रामेटिक हो गया, थोड़ा डेंजरस हो गया। एंड देन 1997 में भी सीन थोड़ा सिमिलर था।

0: रूम की लाइटिंग ही चेंज हो गई। दैट वॉज द विजू शाह इफेक्ट। उस वक्त उनका म्यूजिक लाउड लगता था, आज विंटेज कूल लगता है। और शायद इसलिए ओटीटी शोज लाइक बैट्स ऑफ बॉलीवुड, फिल्म्स लाइक धुरंधर, क्रिएटर्स सब फिर से उनकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विजू शाह गाने नहीं बना रहे थे, एटमोस्फियर बना रहे थे, माहौल बना रहे थे। एंड सच ये है मिलॉर्ड, बॉलीवुड फाइनली उनके साउंड के साथ कैच अप कर रहा है। What I'm going to play you next is one of the coolest title track of the 90s. It still sounds relevant even in 2026. This is Gupt. This is by Biju Shah.
1: Top 20 Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
3: Number 3.

Who is this da has climbed to number 2 and now suddenly the conversation gets much much bigger. It's me Suren aur aaj main aapko ek kitab ke bare mein kuch batana chahta hu. Baat hai 2010 ki Amish Tripathi aur unki likhi hui kitab The Immortals of Melhua Shiva Trilogy uska pehla hissa. Aur jab maine ye kitab pehli baar uthai to main bahut bahut andar chala gaya aur sach keh raha hu bahar hi nahi nikal paya. ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया थी, एक सिविलाइजेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इंसान जो भगवान बन जाता है. और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं. और फिर करण जौहर ने इस किताब के राइट्स खरीद लिए. सालों तक कुछ नहीं हुआ, नो फिल्म, नो अपडेट, नो नथिंग. और फिर 2024 में अमीश त्रिपाठी ने कंफर्म किया राइट्स वापस आ गए हैं. मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी रिलीजियस सेंसिटिविटी थी कि अगर आपकी विजन और आपकी एग्जीक्यूशन में एक भी चूक होती ना तो दुनिया आपको माफ नहीं करती. एंड अब खबर है एंड इट्स नॉट कंफर्म येट कि रणवीर सिंह धुरंधर की कामयाबी के बाद इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं. और मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या रणवीर सिंह ये रोल कर सकते हैं, क्या बॉलीवुड इस फिल्म को जस्टिस दे सकता है. लेकिन ये सवाल ही गलत है यार. असली सवाल ये है कि क्या कोई भी फिल्म, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी बजट कभी वो दुनिया बना सकता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी थी. शिवा ट्रिलॉजी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ डिजर्व टू बी मेड, लेकिन सिर्फ तब जब कोई फिल्म मेकर इतना ब्रेव हो कि वो अपनी विजन को हजारों लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर रख सके. अभी तक वो बंदा आया नहीं था लेकिन शायद अब आ चुका है. इस हफ्ते नंबर 1 पे वो गाना है, वो फिल्म है जिसके बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था, यार धुरंधर इतनी बड़ी हो जाएगी 13 हफ्तों के बाद. वो लोग कहां हैं, धुरंधर कहां हैं और शरारत कहां है, आप वो खुद देख लो. नंबर 1 आदित्य धर, धुरंधर, शरारत, 13वां हफ्ता. नंबर 1

शरारत 13 हफ्ते और नंबर 1। एंड सच ये है कि इस गाने की जर्नी देखकर एक बात समझ आ जाती है कि हिट्स आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी एक गाना सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं बनता, वो पूरे वक्त का साउंड ट्रैक बन जाता है, और शायद शरारत वही गाना है। किसी के साथ ये था इस बार का मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।
1: लेट्स गो क्रेजी।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ओ कुड़ियो गुड़ की न

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Grabana. Burga, burga. La virgua, la burga. Mirchi, burga.
2: Hello?
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे who's this?
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट गाना।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: दिस इज समथिंग

0: Mirchi.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Yabala. Burga, burga. La virbala, burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hi, ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये आपके
4: पास
2: है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किस चीज से पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना होता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
6: विके, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Milci. Iskabala, uskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La virbala, burga.
1: Milci, burga. Burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Bank support.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया?
2: सर आप तो सर पूरा बता रहे
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है
2: क्या? आप तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: अब
2: तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vieva la burka. Mirci, burka.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 5/14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
3: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Radio Mitri New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath. On Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. Ab bari hai hafte ke hottest pop countdown ki. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 gaano mein ek nayi entry hai. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic hai. All this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ki. Gaana number 10 par ek nayi entry hai. Gaane ka naam hai Chori. Mika Singh and Daya the rapper ka hai gaana. Uske baad Mitta Roar ka Shisha. Pichle hafte se 4 position niche drop hua hai. मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन उन्हीं के लिरिक्स मिट्टा रॉर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 10.

0: स्वरा वर्मा मिटर और की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: मिर्ची पर, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 9 पर हमने जो गाना सुना मिट्टा रोर की आवाज में शीशा, पता है वो 2 साल पहले रिलीज हुआ था। बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के मिट्टा ने गाना अपलोड कर दिया एंड धीरे धीरे खुद अपने आप सोशल मीडिया रील्स बनाए उस पे, गाने के बारे में कॉन्वर्सेशंस करते रहे एंड 6 महीने बाद वो गाना ब्लो अप हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंटली लोग उस गाने के साथ जुड़ते रहे, सो मच सो दैट कि 2 साल बाद इस गाने की म्यूजिक वीडियो बनी, ये री रिलीज हुई एंड नए लोगों को इतना पसंद आया दैट हमारे चार्ट्स में पिछले 7 हफ्तों से ये गाना है। यही टेस्टिमनी होती है किसी गाने की कि आप कभी भी कहीं से भी सुने आप पहचान जाए उस गाने को। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का एक इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है। लिसन टू इट वंस अगेन। Lots and lots of right answers, but some wrong answers as well. The correct answer is Vaaste by Dhwani Bhanushali and Nikhil D'Souza, साल 2019 का ये गाना। आज भी इतना प्यार है इस गाने के लिए लोगों के दिल में। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही गलत गेस किया, पहला नशा तो ये दूर दूर तक साउंड नहीं करता है, बट आई हैव गॉटन सो मेनी रिस्पॉन्सेस सेइंग पहला नशा, एक कुड़ी। जिन्होंने भी गलत आंसर किया है, टाइम टू रिडीम योर सेल्फ, इंडी पॉप को इसकी बारी है, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। मैं बादशाह का एक गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, एक इंस्ट्रूमेंटल पीस है, म्यूजिक सुन के बताना है गाने का नाम क्या है। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने में है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। गुरु रंधावा का गाना, गाने का नाम है वोग, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8।

0: Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, sakka bana. Kya bana? Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान।
3: कितने दिन तक?
2: ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पक्का।
1: Gana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. Number 7.

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना कोक स्टूडियो भारत का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी, रावट और कुटले खां की आवाज में। ए अजनबी 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। अभी के अभी जाओ @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो करो। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इफ यू थिंक अबाउट द इंडी पॉप स्टार्स फ्रॉम 2000s एंड 2010, द पंजाबी पॉप स्टार्स जैसे दिलजीत दोसांझ हो गए, उन्हें हमने उनके बड़े गानों के थ्रू डिस्कवर किया। बेसिकली जब म्यूजिक लेबल्स ने उन्हें डिस्कवर किया तब हमने उनके गानों को डिस्कवर किया। बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द लास्ट 4-5 ईयर्स, कॉन्टेंट डिस्कवरी का सबसे बड़ा इंजन बनता जा रहा है एंड म्यूजिशियंस आर्टिस्ट इस कॉन्टेंट गेम में बेटर होते जा रहे हैं विद एवरी डे। And the new wave of pop stars are those जो social media के जरिए अपना connection बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी honesty और songwriting के through अपना music connection बढ़ाते हैं। One of such artists which I feel is doing so well and will continue to do well is called Genie। देहरादून की एक young singer-songwriter, late night uploads, बहुत honest songwriting, वो अपने fans के साथ organically grow हुई हैं। If you look at her social media, you will see that जो लोग उन्हें follow करते हैं, वो बहुत invested रहते हैं। That Genie ने इस गाने को जब लिखा तो उसके पीछे व्हाट वाज शी गोइंग थ्रू, इट्स लाइक वो डायरी एंट्री करती है एंड हर फैंस आर इन्वॉल्वड इन इट। उनका एक गाना है कॉल्ड नादानिया, व्हिच इज अबाउट लॉस, ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लॉस। जब वो उस गाने को प्रमोट कर रही थी, शी वेंट अहेड एंड शी शेयर्ड विद हर ऑडियंस दैट अगर आपने कभी कोई लॉस फेस किया है एंड आप अभी तक उसे ओवरकम नहीं कर पाए हो, शेयर योर स्टोरीज विद मी। एंड सो मेनी फैंस पोर्ड देयर हार्ट्स उनके कॉमेंट्स में, अपनी बहुत पर्सनल स्टोरीज उन्होंने उनके साथ शेयर करी। दैट्स वॉट रियल कनेक्शन इज। वो हमेशा ऐसे छाती फाड़ के, ड्रम्स बजा के, सुपर स्टार की तरह नहीं होता है, वो बहुत ऑर्गेनिक एंड ऑनेस्ट होता है। उनके इंटरव्यूज में, उनके गाने में एक चीज बार बार रिपीट होती है, दैट शी वांट्स अ म्यूजिक टू नॉट साउंड परफेक्ट बट वेरी ह्यूमन, एंड ह्यूमंस आर फ्लॉड। दैट्स व्हाट मेक्स हर सो रिलेटेबल, कि जैसी वो ऑनलाइन है अपने गानों में भी वैसी ही है। शी इज हैविंग अ फैंटास्टिक रन। क्लब हाउस रूम से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, सेल्फ प्रोड्यूस्ड डेमोज, सोशल मीडिया में दोज लेट नाइट फ्रेगमेंट्स, धीरे धीरे सोल्ड आउट शोज, एंड शी हेडलाइन वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल लॉलापालूज़ा अर्ली दिस ईयर। नाम याद रखो, नाम है जीनी। रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ाओ। आई एम गोना प्ले हर सॉन्ग कॉल्ड फीका फीका, व्हिच फीचर्स चार दिवारी इन द म्यूजिक वीडियो। जीनी एट हर बेस्ट। दिस इज फीका फीका प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Ghana Indie Top 10. On Mirchi.
3: Mirchi sun rahe aap. This is the Ghana Indie Top 10 only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram par jaye. Mera handle is @RJKanika. Koi gana share karna hai, koi baatein batani hai, bindas aake hit me up. I truly believe that gaane share karne se pyar padta hai. Aaj hum independent pop music ke bare mein jab baat karte hain, pop stars ke bare mein baat karte hain, all of them have been influenced and inspired by 90s and 2000s ka indie pop. हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जायंट था हिंदी फिल्म्स। आर्टिस्ट के लिए सक्सेस होती थी कि एक बड़ी फिल्म में मेरा गाना आ जाए, और फिल्मों के साथ साथ इंडिपेंडेंट नॉन फिल्म स्पेस में जिस तरीके से इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिशियंस लाइक शान, मोहित चौहान, लकी अली ने वो स्पेस क्रिएट किया, उसका इम्पैक्ट हमें आज भी दिखता है. नीडलेस टू से दैट इंडी पॉप एरा वॉज द गोल्डन एरा ऑफ पॉप म्यूजिक. इसीलिए इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल
1: कसर क्लासिक.
3: हमारी कसर क्लासिक, जहां पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज
4: कब ये मानेगी,
3: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल बाय बाबुल सुप्रियो. हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोमांटिक पॉप सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम. ऑफ कोर्स उस एरा में सिंप्लिसिटी वाज कोर ऑफ ऑल द रोमांटिक सॉन्ग्स, पर इस गाने में कुछ और ही है यार, कुछ है वो बात. कोई ज्यादा क्लेवर लाइंस नहीं है ना ड्रामा है, बहुत सिंपल सीधा प्यार का इमोशन है. आई थिंक द हीरो इंग्रेडिएंट हियर इज इनोसेंस. प्यार की डेफिनेशन को या उसके मतलब को ढूंढने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करिए. द सॉन्ग एक्चुअली इज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन. कन्फ्यूजन है, हेजिटेशन है, थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी है, एंड टीनेज लव वॉज ऑल अबाउट ऑकवर्डनेस. आई रिमेंबर मैं जब इस गाने की म्यूजिक वीडियो को देखती थी बैक इन द डे, आई यूज टू टोटली इमेजिन माई सेल्फ एज दैट सेंट्रल कैरेक्टर जिसके लिए ये हीरो ये गाना गा रहा है. एंड आई स्वेयर आई एम नॉट इवन लाइंग, आज भी इस गाने को सुन के मेरे को बटरफ्लाइज आती हैं. समथिंग इन द वॉइस ऑफ बाबुल सुप्रियो, एक वो वॉर्म्थ है, एक फेमिलियरिटी है, ऐसा लगता है बस मेरे लिए ही बना ये गाना. हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आई एम गोइंग टू राइड ऑन द डेलुलु एक्सप्रेस बाबुल सुप्रियो की आवाज में. दिस इज सोचता हूँ उसका दिल ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है RJ कनिका. एंजॉय.

I will exactly tell you how this song makes me feel. आप कभी फेरिस व्हील पे बैठे हैं, वो मेले वाला गोल वाला झूला, जब वो झूला ऊपर से नीचे आता है तो पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होती है ना, that's what this song sounds like to me. बाबुल सुप्रियो की आवाज में, that was सोचता हूँ उसका दिल on a cassette classic this week. Ultimate love bender है ये गाना. At RJ Kanik on Instagram पर आओ, हमारे साथ 90s and 2000s के ऐसे गाने शेयर करो which you think still hits home. My sound producer अश्का और मैं बहुत बड़े फैन हैं आपके और आपके रिकमेंडेशंस के, एंड यू've helped us make this segment into such a success. So कोई भी रिकमेंडेशंस हो बिंदास आके hit me up. Now back to the countdown, आगे बढ़ते हैं. संजू राठौड़ का गाना बैंगल्स पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 4. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है, इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय. नंबर 3.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 2।

0: का नाम है बैरन बाय द वन एंड ओनली बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. बंजारे इज अ म्यूजिकल एक्ट. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपको ऑन द शो विच इज कॉल्ड गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो. मेरा हैंडल इज @RJKanaka. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दैट न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर अ क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप. मिका सिंह दैया द रैपर का छोरी अनन्या नवेला डेब्यू ऑन गाना नंबर 10. Then गाना नंबर 9 पर मिट्टर और का शीशा.
2: तेरी आंखें पिछलो के सुन दो ना छोरी का हर.
0: गुरु रंधावा का वोग दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. गाना नंबर 7 पर इज आदित्य रिखारी रेवट और कुटले खां का ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत. उसके बाद गाना नंबर 6 पर दिलजीत दोसांझ का डीलर. डबल वैमी बाय दिलजीत दोसांझ अलोंग विद सिया रांझा ऑन गाना नंबर 5. संजू राठौर का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. देन अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर

बंजारे का बैरन ऑन गाना नंबर दो। बैरन पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब वी गॉट अ न्यू सॉन्ग ऑन द टॉप। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके करण औजला एकी का गाना गाने का नाम है बॉयफ्रेंड, फिर से क्लाइम करके बन गया है गाना नंबर वन। 24 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है। बॉयफ्रेंड इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर एक। यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: एंटरटेनमेंट बहुत हो रहा है आजकल कंटेंट भी रील्स भी सॉन्ग्स भी शोज भी हर फ्राइडे कुछ ना कुछ आ ही रहा है लेकिन ऑनेस्टली याद रहने वाली चीजें बहुत कम बन रही हैं और शायद इसलिए इस वक्त बॉलीवुड का मूड इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्म है, इसके गाने सिर्फ चल नहीं रहे, कल्चर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड दूसरी तरफ 90s और 2000s की मेमोरीज फिर से कमबैक कर रही है। पुराने साउंड सडनली कूल लगने लगे हैं, नए आर्टिस्ट ओवरनाइट स्टार्स बन गए हैं एंड ऑडियंस सिर्फ नॉइज नहीं फीलिंग ढूंढ रही है, कनेक्शन ढूंढ रही है, बिकॉज़ इवेंचुअली एल्गोरिथम सिर्फ अटेंशन खरीद सकते हैं, इमोशन नहीं। और इसी इमोशन के साथ मुंबई से लेकर दुबई तक, कानपुर से दिल्ली तक, दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड मैं हूं इस शो का होस्ट सुरेन सुंदरम। लेट्स बिगिन। फर्स्ट अप गाना नंबर 20। देखो शुरुआत में कहा था ना मैंने, एंटरटेनमेंट वैसे बहुत हो रहा है लेकिन याद रखने वाली चीजें कम हैं। This is Dil Wale Chor by Aditya Rikhari and Shreya Ghoshal that features in Pati, Patni aur Wo Do. Sun lo bhai, yaad reh gaya to achhi baat hai.
4: Number 2.

एतबार कुछ गाने अजीब होते हैं, खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका मूड थोड़ी देर और साथ चलता है। इट्स मी सुरेन, एंड शायद इसलिए इस हफ्ते जब मैं एक ओथ सेरेमनी देख रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार एक फिल्म चल रही थी, नायक अनिल कपूर एक दिन के चीफ मिनिस्टर। और जब हमने वो फिल्म देखी थी, इट फेल्ट वाइल्ड, इट फेल्ट एक्साइटिंग, इट फेल्ट इमोशनल। लेकिन एक चीज क्लियर थी यार, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। बिकॉज लेट्स गेट रियल, कौन सा सुपरस्टार अपनी पीक पे पॉलिटिक्स में जंप करता है? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया था, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, लेकिन इस बार फीलिंग थोड़ी अलग थी। शायद इसलिए क्योंकि विजय अभी भी फुल सुपरस्टार मोड में है। He's got young energy, massive fan following, और लोगों के साथ वो इमोशनल कनेक्शन जो सिर्फ स्टार्स के पास होता है। और ओथ सेरेमनी देखते वक्त एक सेकंड के लिए जेन्युइनली लगा, कभी कभी सिनेमा सिर्फ एस्केपिज्म नहीं होता, कभी कभी वो रियलिटी के बहुत नजदीक आ जाता है। और उस मोमेंट में नायक थोड़ी कम फिक्शनल लगी। Look, I don't know if Vijay's real life role as a chief minister नायक की तरह होगी, but man, it felt good. खैर, अब एक ऐसी आवाज जो पहली बार सुनते ही अटेंशन खींच लेती है। From मैं वापस आऊंगा, this is Mascara, sung by Nilanjana Ghosh Tastidar, जो दुनिया भर में A.R. रहमान के साथ बेस गिटार प्ले कर चुकी हैं। एंड सच कहूं तो सिर्फ रहमान साहब ही हैं जो किसी म्यूजिशियन में से एक ऐसी हॉन्टिंग आवाज डिस्कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा कतिया करूं वाला मूड है, थोड़ा सा मिस्ट्री है। दिस इज मस्कारा, डेब्यूइंग दिस वीक एट नंबर 18 फ्रॉम मैं वापस आऊंगा। नंबर

0: कैंटीन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो हेलो
3: सर वेरी गुड इवनिंग बैंक से बोल रहा हूँ
2: हाँ बोलिए
3: सर आई एम सो सॉरी सर बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का
2: बनवाया था भैया क्या हो गया नहीं क्या बात
3: है सर आई एम सो सॉरी पूरा बताइए
2: क्या करो भैया कहाँ क्या हो गया
3: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को कहीं पे यूज किया आपने कुछ परचेजिंग करी उससे
2: बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो क्या कर रहे हो
3: आई एम सो सॉरी सर ऐसी कभी कभी हो जाता है सर सर उससे कुछ परचेज किया आपने
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया हेलो
3: आई एम सो सॉरी सर सर मैं आपसे कहना चाह रहा था सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था सर बस फाइनली ये बता दीजिए कुछ परचेज किया आपने उससे कुछ खरीदा था
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा भैया पागल
3: है क्या I'm so sorry, sir, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे
2: पागल पागल है
3: अब तो देने पड़ेंगे सर
2: हेलो
3: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे
2: कौन बोल रहा है विपिन
3: नहीं सर तो बैंक में आना पड़ेगा बैंक का खाना खाना पड़ेगा बैंक के पैसे देने पड़ेंगे
2: अब
3: तो फंस गए सर
2: हेलो
3: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने एक मजाक किया छोटा सा मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था आपका मुर्गा बन गया है
2: उसके पैसे को क्या हुआ भाई देने पड़ेंगे
3: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे आप अब भी नहीं समझे मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ
2: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
3: जी अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 70

still killing it with its sound, Dhurandhar. Aur honestly, Bollywood ka superhero track record bhi thoda Dhurandhar ki tarah hai. Bollywood ko larger than life cheezein hamesha pasand rahi hain. Kabhi bahut sahi, kabhi bilkul off target. Because if you really think about it, humne har genre crack kar liya hai. Romance, action, family drama, crime sagas. Lekin superheroes, well, सिर्फ दो नाम है जो बार बार कॉन्वर्सेशन में आते हैं, एक मिस्टर इंडिया एंड दूसरा क्रिश, और बाकी फ्लाइंग चाट, द्रोणा, भावेश जोशी, ब्रह्मास्त्र. देखो सब में एफर्ट तो थी लेकिन वो कन्विक्शन मिसिंग थी. इवन शाहरुख खान रा वन, जिसको वक्त ने उतना सही ट्रीटमेंट नहीं दिया था. और अब सडनली न्यूज आ रही है कि राज और डीके एक सुपर हीरो फिल्म डेवलप कर रहे हैं विद नन अदर देन सलमान खान. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलमान खान एक रिटायर्ड एजिंग सुपर हीरो प्ले करेंगे. नाउ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज सच क्या है, सलमान भाई को कमबैक की जरूरत नहीं है यार, सलमान भाई को डायरेक्टर्स की जरूरत है. आप जरा नोटिस करो, राधे, किसी का भाई किसी की जान, इन फिल्म्स के डायरेक्टर आपको याद भी हैं? एंड गलवान की तो प्लीज बात भी ना करो, वो आएगी कि नहीं आएगी ना भाई को पता है ना किसी की जान को. इसलिए राज एंड डीके एक्साइटिंग लगते हैं, उनके पास वो टोन है, वो ह्यूमर है और फ्लॉड हीरोज को इंटरेस्टिंग बनाने का दिमाग भी है. लेकिन हाँ, बॉलीवुड ने सुपर हीरो जॉनर में हमें ट्रस्ट इश्यूज दिए हैं, इसलिए एक्साइटमेंट तो है पर एक्सपेक्टेशंस भी कंट्रोल्ड है. नेक्स्ट अप इस गाना नंबर 15, रूप दीरानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो. फिल्म है तो 2026 की, पर पता नहीं क्यों लगता है इट्स स्टक इन 2006.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
3: Number 14.

0: Tera Ho Jaun, a typically Sachin Jigar song with Junita Gandhi and Stebin Ben. And Arijit ke retirement ke baad, thank God, new voices are emerging. Varna har hero ki ek hi awaaz hua karti thi. वैसे भी बॉलीवुड में हीरो बनना शायद इजी है, लेकिन हीरो बने रहना, ना दैट इज द रियल गेम. स्पेशली आज के वक्त में जहां फ्राइडे मॉर्निंग से ज्यादा ब्रूटल फ्राइडे इवनिंग का सोशल मीडिया होता है. और हाल ही में वरुण धवन की एक बात मुझे याद आ गई, उस बात में एक सरप्राइजिंग सच्चाई थी, क्योंकि फॉर अ फ्यू सेकेंड्स वरुण के अंदर का एक्टर नहीं, वरुण की इनसिक्योरिटी बोल रही थी.
1: मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में. द मोस्ट स्ट्रेस आई फेल्ट वाज व्हेन मैं तेरा हीरो वाज रिलीज. मैं तेरा हीरो बिकॉज आई फेल्ट कि दिस वाज अ फिल्म, स्टूडेंट वाज अ फिल्म विद थ्री एक्टर्स. चलो यू नो ऑल द अदर एक्टर्स हैव गॉट वर्क आफ्टर दैट एज वेल, आई हैव नॉट. नाउ आई एम डूइंग दिस फिल्म विच इज अ कंप्लीट कॉमेडी फिल्म. न्यू एक्टर्स ये जोन या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में. अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलूं कि यार मैं सच्ची में हीरो हूं, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूं, एक्शन करना चाहता हूं, रोमांस करना चाहता हूं, मैं सब कुछ करूंगा ऑडियंस के लिए, जस्ट गिव मी अ चांस. एंड लिटरली आई क्लॉड एंड फॉट एंड क्राइड एंड डन एवरीथिंग पॉसिबल इन दैट फिल्म. मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया. लिटरली मेरा करियर वॉज, इफ मैं तेरा हीरो डिडंट वर्क एज अ सोलो हीरो फिल्म फॉर मी, आई वुड नॉट Be sitting here today.
0: और ये amazing है, क्योंकि बाहर से stardom बहुत glossy दिखती है, launches, hits, fame, fan following. लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर सबको होता है. What if the audience stops choosing me? What if they stop loving me? शायद इसलिए वरुण की बोली ये बात connect करती है, because for one moment वरुण धवन star नहीं लगे, बस एक actor लगे जो survive करना चाहते हैं. और अब एक गाना जो ऑफिशियली सैयारा गैंग का हिस्सा बन गया है, वही लॉन्गिंग, वही सॉफ्ट हार्ट ब्रेक, वही लेट नाइट फीलिंग. फ्रॉम चांद मेरा दिल, दिस इज द टाइटल ट्रैक, चांद मेरा दिल, बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 13.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 12।

जाइए सजना, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ अच्छे नहीं लगते, वो एक पूरा वक्त याद दिला देते हैं, एक फेज, एक इंसान, एक वर्जन ऑफ योरसेल्फ। हाय, इट्स मी सुरेन, एंड हर डेकेड का एक साउंड होता है, और कभी कभी कोई एल्बम उस पूरे दौर की इमोशनल मेमोरी बन जाती है। 90s में देयर वाज अ रोजा, अ दिल से, अ दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, अ ताल, अ हम आपके हैं कौन, एंड देन द लास्ट डेकेड 2010s, उसमें एक रॉकस्टार थी, ये जवानी है दीवानी थी, एंड ऑब्वियसली आशिकी 2। और ऑनेस्टली स्ट्रीमिंग ईरा में हिट सॉन्ग्स तो बहुत आए हैं, लेकिन कंप्लीट एल्बम्स जहां हर गाना लोगों की लाइफ का पार्ट बन जाए, वो थोड़ा रेयर हो गया है। इसलिए धुरंधर इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बॉलीवुड को फिर से एक फुल एल्बम मोमेंट मिला है। लेकिन जब भी डिफाइनिंग रोमांटिक एल्बम्स की बात होगी, आशिकी 2 अलग खड़ी होगी। तुम ही हो वॉज ऑल अबाउट लॉन्गिंग, लेकिन एक और गाना था इस एल्बम में जो और डेंजरस था इमोशनली, बिकॉज इट वॉज नॉट हार्ट ब्रेक, इट वॉज कन्फ्यूजन। वो फीलिंग जब दिल ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है, पर आप खुद से अभी भी सवाल पूछ रहे होते हो, एंड मे बी दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टिल हिट्स सो हार्ड। वैसे नंबर 11 पे इस हफ्ते है राम जी आके भला करेंगे फ्रॉम भूत बंगला, दैट कंटिन्यूज इट्स क्लाइम। लेकिन राइट नाउ माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम आशिकी 2, इसे गाया है अरिजीत और पलक मुछाल ने। दिस इज चाहूं मैं आना।

वही दिल लगाया। और कभी कभी ना एक गाना हिट होने से पहले ही लोगों का बन चुका होता है, इंटरनेट पे, रील्स में, रैंडम लेट नाइट स्क्रोल्स में। और कुछ महीने पहले ऐसी ही दो आवाजें अचानक हर जगह सुनाई देने लगी थी, क्रिश मंडल एंड किशोर मंडल, दो भाई, नो बिग सेटअप, नो इंडस्ट्री लॉन्च, बस टैलेंट और एक अजीब सी ऑनेस्टी। और मैं खुद इन दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ एंड इनका एक कवर तो अलग ही लेवल पे चला गया था।

0: See, that's the thing. Perfect नहीं है, polished भी नहीं है, लेकिन इस गाने में वो feel है, और शायद इसलिए लोग इनसे connect कर गए.
1: And फिर Bollywood enter हुआ. Song को scale मिल गया, stars आ गए, gloss आ गया, बादशाह आ गए. And suddenly जिन दो लड़कों की वजह से ये गाना चला, वो अपने ही गाने में background में खड़े नजर आए, like extras. And that felt strange. और थोड़ा सा दुख भी हुआ. नॉट बिकॉज सक्सेस गलत है, ऑफ कोर्स नहीं है यार, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री टैलेंट को एलिवेट करती है और कभी कभी उसे डेकोरेट कर देती है. इंटरनेट ने उन्हें स्टार्स बनाया था, बॉलीवुड ने उन्हें एस्थेटिक बना दिया है. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज रियल कनेक्शन इवेंचुअली अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. और अब एक और शादी के बाद के चक्करों वाला गाना, नंबर 9 पे, फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. दिस इज व्याह करवा दो जी, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 8

मैं और तू नंबर 8 और इस हफ्ते मैं सुरेंद्र सुंदरम और तुम और पूरा इंटरनेट रेड कार्पेट्स पे था। पहले द मेट गाला और अब द कैन फिल्म फेस्टिवल। ऐश्वर्या राय बच्चन स्टेयरकेस की मालकिन जैसे हमेशा से रही हैं। There's Alia Bhatt, Aditi Rao Haidri, Jacqueline Fernandez and of course influencers जो full attendance में होंगे, no absentees। कैन जो कभी वर्ल्ड सिनेमा का सबसे बड़ा स्टेज हुआ करता था, अब विजिबिलिटी का ओलंपिक्स बन गया है। कौन ट्रेंड हुआ, कौन मीम बना, कौन रील्स पे छा गया। और ये भी सच है, कई लोग वहाँ फिल्म प्रमोट करने नहीं जाते, खुद को प्रमोट करने जाते हैं। देखो मैं जज नहीं कर रहा, 2026 में अटेंशन भी एक करेंसी है, और जिस दुनिया में 15 सेकंड की रील किसी को ओवरनाइट सेंसेशन बना सकती है,

वहां रेड कार्पेट भी कंटेंट बन जाता है। बस इतना कहना था, स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बाद सर्टिफिकेट मिलता था, यहाँ ब्रांड डील्स मिलते हैं। वो बीच में जो आपने सैयारा सुना, जस्ट टू रिमाइंड यू दैट वाज गाना नंबर 7। एंड जो लोग एक्चुअली कुछ फील करते हैं, एक्चुअली कुछ क्रिएट करते हैं, वो यहाँ है इस काउंटडाउन पे हर हफ्ते। नंबर 6 पर है विशाल मिश्रा एंड उनकी दीवानियत। नंबर 6।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी हेलो।
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं, अरे मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

वाओ, और ऑनेस्टली डेविड धवन का नाम आते ही एक पूरा 90s यूनिवर्स एक्टिवेट हो जाता है। आई एम सरेन एंड 90s की बात हो रही है तो उसी दौर में एक कंपोजर थे जो बॉलीवुड के रूल बुक पे चल ही नहीं रहे थे, बिजू शाह। एंड यू नो व्हाट, 90s का बॉलीवुड मेलोडी पे चल रहा था।

विजू शाह आ गए। सडनली म्यूजिक से रोमांटिक नहीं रहा, स्टाइलाइज्ड हो गया, ड्रामेटिक हो गया, थोड़ा डेंजरस हो गया। एंड देन 1997 में भी सीन थोड़ा सिमिलर था।

0: रूम की लाइटिंग ही चेंज हो गई। दैट वॉज द विजू शाह इफेक्ट। उस वक्त उनका म्यूजिक लाउड लगता था, आज विंटेज कूल लगता है। और शायद इसलिए ओटीटी शोज लाइक बैट्स ऑफ बॉलीवुड, फिल्म्स लाइक धुरंधर, क्रिएटर्स सब फिर से उनकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विजू शाह गाने नहीं बना रहे थे, एटमोस्फियर बना रहे थे, माहौल बना रहे थे। एंड सच ये है मिलॉर्ड, बॉलीवुड फाइनली उनके साउंड के साथ कैच अप कर रहा है। What I'm going to play you next is one of the coolest title track of the 90s. It still sounds relevant even in 2026. This is Gupt. This is by Viju Shah.
1: Top 20 Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 3.

Tuhi Dasda has climbed to number 2 and now suddenly the conversation gets much, much bigger. It's me, Suren, and today I want to tell you something about a book. The story is 2010, ki, Amish Tripathi, and his written book, The Immortals of Melhua, Shiva Trilogy, its first part. And when I took this book for the first time, I went very, very inside. और सच कह रहा हूं, बाहर ही नहीं निकल पाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया थी, एक सिविलाइजेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इंसान जो भगवान बन जाता है। और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं। और फिर करण जौहर ने इस किताब के राइट्स खरीद लिए। सालों तक कुछ नहीं हुआ, नो फिल्म, नो अपडेट, नो नथिंग। और फिर 2024 में अमीश त्रिपाठी ने कंफर्म किया, राइट्स वापस आ गए हैं। मैं हैरान नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी रिलीजियस सेंसिटिविटी थी कि अगर आपकी विजन और आपकी एग्जीक्यूशन में एक भी चूक होती ना, तो दुनिया आपको माफ नहीं करती। एंड अब खबर है, एंड इट्स नॉट कंफर्म येट, कि रणवीर सिंह धुरंधर की कामयाबी के बाद इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं। और मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या रणवीर सिंह ये रोल कर सकते हैं, क्या बॉलीवुड इस फिल्म को जस्टिस दे सकता है। लेकिन ये सवाल ही गलत है यार। असली सवाल ये है कि क्या कोई भी फिल्म, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी बजट कभी वो दुनिया बना सकता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी थी। शिवा ट्रिलॉजी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ डिजर्व टू बी मेड, लेकिन सिर्फ तब जब कोई फिल्म मेकर इतना ब्रेव हो कि वो अपनी विजन को हजारों लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर रख सके। अभी तक वो बंदा आया नहीं था, लेकिन शायद अब आ चुका है। इस हफ्ते नंबर 1 पे वो गाना है, वो फिल्म है जिसके बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था, यार धुरंधर इतनी बड़ी हो जाएगी 13 हफ्तों के बाद। वो लोग कहां है, धुरंधर कहां है और शरारत कहां है, आप वो खुद देख लो। नंबर 1, आदित्य धर, धुरंधर, शरारत, 13वां हफ्ता। नंबर 1।

0: तारत 13 हफ्ते और नंबर 1। एंड सच ये है कि इस गाने की जर्नी देखकर एक बात समझ आ जाती है कि हिट्स आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी एक गाना सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं बनता, वो पूरे वक्त का साउंड ट्रैक बन जाता है, और शायद शरारत वही गाना है। इसी के साथ ये था इस बार का मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।